बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते ए सिक्का चलाया।

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहने वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदो हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, ओदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के ओ भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, ओदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सिखिया ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया, अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे

सारी दुनिया नाल रुस के कोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो

उसने सिर चुका दिता। अते इस तू बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने बड़े प्यार नाल माधो दास नू देखिया,

प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया, मैं गोबिंद सिंह हां, बैरागी नहीं। फटिया फटिया अखां नाल उन्हां

घोर हिरनी भी है जिसनू कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देगी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनू जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ते पे ने जुल्म पै करते ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां सारिया ने

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दित्ता गया। ये सारियां गल्लां माधोदास ने सुनिया, ओदियां अखां विचों अथरू वह तुरे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे ने। इतिहास दसदा है कि माधोदास ने बैराग अते जंगल नूं हुण छड्ड देण दा फैसला कीता अते प्रार्थना कीती कि मैनूं आग्या दिओ अते मैं जाके जुलम दा जिहड़ा राज है अते जालम जिहड़े ने उहनां नूं खत्म कर दे। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माधोदास बैरागी नूं अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नूं गुरबख्श सिंह भी कहा जांदा। गुरु साहब ने अपने 5 तीर दिते जिन्हां दे नाल सोने लगे हुए सन। 5 सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंढे तों

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, ता दशक प्रजापति ने सती नू कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टा दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ़ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिव प्रचंड महातांडव नचदी हुई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरो नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटां विचों

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखया, ओ नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वह नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिया होया आखिया, एहो ही वो सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुनिया गया। मैं चाहना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दियो, नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हाल चला दियो, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दियो। देखदिया देखदिया बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरा नाल अहलकारा नाल जरनैला दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकया। देखदिया देखदिया शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान ओ भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले लिया। और 7 साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

एक संवाद पेश करते ने पवित्र बाणी द्वारा। असा कलजुगी जीवां नूं समझा रहे ने घर दे विच इस्त्री अते मर्द दोवें बड़े प्यार नाल रह रहे ने। यह जिहड़ा मर्द है इसनूं जदों सतसंगत प्राप्त होई उथों इसनूं पता लगा कि जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। जिहड़ी तत वस्तु नूं प्राप्त करन वास्ते यानी जीवन ते मरण दे इस गेड़ नूं खत्म करन वास्ते जो साधन है वो सतगुरु ने दसिया कि नाम जप सिमरन कर, जीवन विच चंगे कर्म कर, शुभ कर्म कर, ता तेरा ये जीवन सफल होवेगा। इस तो पहला की हालत सी कि ये जेड़ी स्त्री सी जो मंग कर दी एदा पति ओयो चीज लेके हाजिर करता सी, पर हुण इहदी इह परवाह नहीं करदा क्योंकि हुण इहनूं पता लग गया है कि तत वस्तु कुछ होर चीज है। हुण इह परवाह नहीं करदा, मस्त रहिंदा है। एक दिन वक्त वेखिया, इस स्त्री ने इहनूं पुछिया

जो पति ने सचियां गल्लां कहियां, जो परम पिता परमात्मा दा हुक्म उनू जो ज्ञान विच आया होया सी रोज दसदा, पर ए सोच दिए तेरे नाल मखौल पिया करदा, एवें हासा करदा है। इन्हां सचियां गल्लां नू ओ हासा करके जानदी है, पर एक दिन उदों पता लगा

कोई रोक नहीं सकता। जिन्हां ते माण करदा है भरा भाई रिश्तेदार दोस्त मित्र एथों तक के सब तो नजदीकी रिश्ता है इस्त्री दा, ओ भी साथ छड़ जांदी है। सारे कट्ठे होके फिर दीवान दे उत्ते रख के बन के इस नू चार बंदे अपने मोढ़ियां ते चुक के तुर पैंदे ने। जेड़े इस नू मेरा मेरा करदे सन ओही हुण इस नू अगन भेट करन वास्ते ओही इस दा अंतम संस्कार करन वास्ते तुर पैंदे ने। ऐसी है ए दुनिया, ऐसा है ए संसार। हजूर गुरबाणी भी सानू उपदेश फरमान कर

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने। तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे पे खारी।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है। जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं

अंदर बसते हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जड़े वैरी सन ऐ पातशाह हूं ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुन मेरा बुरा नहीं।

0: पूर पूर देख दे,
1: पाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझौ दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, पाप दिया पंडा ने जलाद बन दे।

पाटिल जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोतायो। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साद सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जिनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरिया विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरिया विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीयां ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासा नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

काल होए मेरा स्वामी किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जन नानक धूड़ मंगे